没冷气，冷气。तो शाले होया क्या ना पोटा गल बला बलाना में हम देखे ला पोटा मटे क्या ना बलाने में का पहनो ने देखे ला मैं सिंधु वाला देन मटो अपेड़ नांगी दिन एक्चुअल में गल पन्ना देखा ही बिना रिहतलिस